0: महाराज ने इनू करण पर्व लिखण दा ही दिता। बड़ी जड़ी बख्श सी ना महिमा वो प्राप्त कीती है। इस तरीके दे नाल छंदाबंदी दी सोहनी चाल इन्हें लिखी। कवरेश ने जो कवरेश केशोदास दा लड़का होया कवि, ये कवरेश ने द्रोण पर्व जिहड़ा है ना ये भाषा करके सुनाया। ते हंस राम जिहड़ा कवि दी पठानका तो पता लगता है कि हंस राम दा अगे नाम आवेगा। इन्होंने करण पर्व का टीका किया महाराज के कहने से, अमृत राय ने नहीं किया। सो हंस राम तां करके करण पर्व आरंभ अमृत कवि ने लिखिया। जिहड़ा अमृत राय है उन्हें लिखिया सी सभा पर्व। इन्हें तो यह पटियाले लाइब्रेरी विच भजवीर सिंह जी कहते पिया है ये करण पर्व सभा पर्व जिहड़ा उन्हां कवियां ने लिखिया सी। ते हंस राम लिखदा कि 60,000 रुपया मैनू करण पर्व का इनाम मिलिया दसवें पातशाह कोलों। जिवें उन्होंने अपनी कविता च लिखिया, प्रथम किरपा कर राख कर गुरु गोबिंद उदार, टका करे बख्शीश तव मोको 60,000। यह करण पर्व भी पटियाला लाइब्रेरी विच ही पिया है। सो इस करके महाराज कवियां नूं 60,000, किसी नूं 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, पहला कवि जी कह आए ने करोड़ करोड़ रुपया भी सतगुरु महाराज ने कईयां नूं बख्शिश कीता है।
1: पावन कवि गिनती मैं नीत रह निटेर खावे चेत।
0: 52 सोहने कवि, अच्छे टॉप दे कवि जिहड़े सी दुनिया भर दे विच्चों दसवें पातशाह ने अपने कोल रखे। हर रोज उन्हां तों इहदे विच इह किंतु आम लोगों भावें आ जाए पर आप संगत जो हाँ यह गल है कि सतगुरु भावें किसी के सिर पर हाथ रख के लिखवा लैन किसी भी चीज नूं, सतगुरु सीधा लिख देन इहदे उत्ते नहीं किंतु करीदा हुंदा कि महाराज ने उह तां कवि तो लिखवाया जां लोग जिवें किंतु करदे इह तां किसी कवि की बाणी है। इस तरह की गल नहीं है। महाराज दसवें पातशाह लिखवाउंदे ने आप कृपा करके। ये आपां थोड़ा जिहा अगे चल लईए ये प्रमाण अपने सामने आप ही आ जाएगा। एक कवि जिहड़ा आवेगा महाराज दे पास जिहड़ा ये दसवें पातशाह नूं कहेगा कि महाराज कित्थे किसे नूं कविता आउंदी है, जिहड़ा तुहाडे कोल आ जांदा है जिहड़ा तुहाडा नाम भी लै लैंदा है उहनूं कविता रचनी आ जांदी है। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने कह के लिखवाइया। ये नहीं हुंदा कि महाराज आप कलम पकड़न ते लिखण। अगे तां हुण जिवें कोई अज दे युग विच बंदा ये कहे कि गुरु ग्रंथ साहिब दसवें पातशाह ने आप तां नहीं लिखिया दमदमा साहिब, ये तां भाई मनी सिंह ने लिखिया, एवें लोकां च शंका ही पाउणी है। लो शंका पा दिंदे आपां हुण। शंका दी कीहड़ी गल है, शंका खड़ी भी पहलां भी तां भाई गुरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप लिखिया, ये तां गुरु अर्जन देव जी ने लिखिया हैगा। इउं लोकां जिवें मर्जी शंका खड़ी कर दिओ, दसवें पातशाह कोई भी चीज नूं बोलदे तां आप ही रहे ने भई इहनूं ऐं लिखणा है, इहनूं ऐं लिखणा है। उहनां कवियां नूं वडियाई दे दित्ती, चंगा भाई इह तूं लिख। इस तरह सतगुरु महाराज ने बहुत सारियां जिहड़ियां चीजां ने ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹਨ।
1: ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਤ ਪਾਏ।
0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ।
1: ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕਰ ਤੈਂ ਆਇਓ ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਡਾਇਓ।
0: ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੀ ਕੋਈ।
1: ਕੀਨ ਸਵਈਆ ਅਰਥ ਛਪਾਇਓ ਅਬ ਲਾਖਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਖਾਇਓ।
0: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਝ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖਣ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ ਬੈਠ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਨਿਟ ਬਖਾਨੇ।
0: ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, کول بیٹھ کے اس طرح بولیا
1: دیش دیش میں راور کیرت جس جس تے سنیت بستیرت
0: تہاڈی جڑی مہاراج مہما ہے نا بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے دیشاں دیشاں دے وچ ودیشاں دے وچ سمندروں پار تک تہاڈی مہما ہے
1: سب بدیا کے گنی بخانے رہ سبا تمری سنمانے
0: سارے پرکار دی ودیا دے جڑے گنی لوک نے کہے جاندے نے ایک چیز ہے مہاراج کتے سانوں کوئی پوچھتا نہیں ستکار نہیں دندا پر تہاڈی سبا دے وچ آ کے سنیا ہے کہ ہریک نو مان آدر ستکار ملتا ہے
1: چند رچے لاکھو رہ تیر پرکھو سب کے گنی گہیر
0: چند رچدے نے کبھی جانا لکھا ہی تہاڈے کول رہندے نے کبھی جانا لکھا چند رچدے نے تے تسی انہاں نوں پرکھدے ہو گنا دے خزانے ہو تسی
1: ایک سویا رچیو نوینا ارتھ عجائب شو تھر دینا
0: کہن لگیا میں ایک نا نواں چھند رچیا بڑا ہی ارتھ او دا ایسا گوج ہے او جے کوئی تہاڈا دس سکے ایتھے کوی اس طرح مہاراج نوں کہندا میں ایک ایہا جا رچیا ہے جیہدا ارتھ بڑا اوکھا ہے او دا ارتھ میں گوج رکھیا اندر
1: سبا آپ کی میں نے ایسا ظاہر کہ ارتھ کو جیسا
0: تہاڈے سبا وچ مینوں نہیں لگدا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوے کبھی بیٹھا ہوے جیڑا میرے لکھے چھند دے ارتھ ظاہر کر سکے
1: سن ہنکار سمیت باچا بولیو
0: بڑا گوج بھاگ ہے کوئی جان نہیں سکدا ہنکار نہیں پاؤندا گراں نوں پھر سچے پاتشاہ یوں بولے
1: نج مت کر کے کینس جتھا سبا مجھارو چارو تتھا
0: اچھا مہاراج کہنے چنگا بھائی تیری بدھی وڈی ہے بھائی چنگا پھر یوں کر جے اپنی بدھی نال توں لکھیا ہے تو تو ساری سبا دے وچ لکھیا ہویا ہو سانو سنونا کر چھند
1: جس پرکار کر کے کبھی لے آئیو شری ست گر کو تب سنایو
0: جس طرح وہ کبھی لے کے آیا بنا کے چھند اس وقت ساری سنگت وچ ستگران سمیت سارے نو سنایا
1: سبا بکھے سب ہو سن لیو سو میں ہی آ پاٹھ لکھ دیو
0: سبا وچ ساری سنگت نے سنیا کبھی جی کہنے وہ میں ایتھے مول پاٹھ وہ لکھ دیتا ہے
1: سویا نو سات پیے نو سات کیے نو سات پیے نو سات پیائے
0: سارا ہی پڑھنا
1: نو سات رچے نو سات بدے نو سات پیا پیدا ایک پائے جیت کلا نو ساتن کی نو ساتن کے مکھ انچر چھائے مانو میگھ کے منڈل میں کبھی چندن چند کلور چھائے
0: کبھی کہنے لگیا اس طریقے نال کہ میں نو تے سات سولہ سولہ سولہ دے اتے ایک نے چھند اچارن کیتا ہے ہوں یہ جڑا انہیں اچارن کیتا کیونکہ یہ ارتھ پھر اگے بھی آ جانے ہیں اس کر کے یہ دو باری پھر بچارے جان گے ارتھ کہن تو بھاگ ہے یہ کہ نو سات کیے نو سات کیے نو تے سات سولہ سال دی تریا استری نے سو سولہ جڑا سال دا سی اس پرکار پتی یا سولہ سال چم پڑو یہ ساری چیزاں سولہ سولہ سولہ دے سال نہ لکھ دیتی انہیں ہوں آم بندے نو یہ سمجھ نہیں پہنتی اس نو لکھے دا ہنکار ہو گیا ہنکار جدوں ہویا مہاراج نو پایا نہیں مہاراج کہے چنگا سنا تا پھر انہیں سارا چھند جدو سنا دتا سبا دے وچ
1: کلگی تر سن مسکائے کہ چندن کو گرب گوائے
0: کلگی تر مہاراج سن کے ہسے کہہ کے چندن کبھی نو دا ہنکار دور کیتا
1: اس جیسن کے ارتھ بچارن امرے کاہی کرے اچارن
0: مہاراج کہنے میں بس سوچیا پتا نہیں کنا اوکھا لکھیا ہوئے گا تم پتا نہیں کہڑی نوی چیز کڈ کے لیا کہ کبیاں تو ارتھ نہیں کراؤنے میں आ जरा तू लेके लिया छंद साढ़े तो जे घोड़िया घा पाने वाले घा ही ने ना ऐह ज्यादा अर्थ तो वह कर देंगे ने तू अपने जानी बड़ी वड्डी चीज लिख के लिया
1: लायक कवियन के नाहे मिल आपस में करते काहे
0: ये तो कविया वाली गल थोड़ी लिखी है नवसात नवसात करके लिख दिता ये तो साढ़े घा ही आम मिल के बह के ही कविता बना लेंदे है
1: छंद सभा हमरी मैं सरसत जिनके पाठ करे रस बरसत
0: साडी सभा दे विच तां इह जे रस वाले छंद बोलदे ने पढ़ के मिठास भरे ज्ञान वाले जिन्हां दे कवियां दे साढ़े तक घा ही इह जिहा बोल दिंदे ने और रस बरसदा हुंदा नाले इस करके ए तेरा कोई इन्ना वड्डा नहीं लिखिया होया छंद
1: कवियन के हमरे है दास पटत सुनत आनत जब कास
0: साढ़े जड़े कवि ने उन्हां दे घोड़िया नूं घा पाउण वाले जड़े काही ने वह कविया दे नाल ही रहिंदे ने हर वक्त इन्ना कदा सुन सुन के वह भी सिखे पए ने जां जदों कट्ठे बहिंदे ने आपस च साढ़े घोड़िया दे काही इन्ना लिख लिख के तो कविता बना के सानू कई बारी सुना हटे ने
1: चंदन कवि गुर के बच सुने बोले उतार कर अचरज कने
0: ए चंदन कवि ने जदों दसवें पातशाह को बचन सुने हैरान हो गया हैरान हो के पर फिर भी यूं बोलिया
1: एक काही को ले बुलाए जो इसके दे अर्थ सुनाए
0: कह लगे चंगा महाराज ठीक है फिर जे तुसी कहने काही लिख लेंदे ने एक काही बुलाओ तो फिर जेड़ा मेरे इस छंद दे अर्थ सुना सके
1: जिस दे आवे मोए प्रतीत सभा गुरु की है कवि जीत
0: जिस करके मेरे मन दे अंदर भरोसा हो जावे कि कविया नूं जितन वाली सभा है
1: हेम लष्ट का जुत तै खरेओ प्रब सुनताए पठावन करो
0: सो उस वक्त उथे महाराज का चोबदार जिहड़ा खड़ा सी हेम लष्ट का सोने की चोब पकड़ी हुई सी जिन्हें महाराज ने फिर उन्होंने भेजा कहने जा वे बुला के लिया उतों
1: आलो धन्ना सिंह हकार इसी छिन कुछ लगे न बार
0: कहने जाओ अपने धन्ना सिंह का ही है ना उन्होंने बुला के लिया देर न लगे उन्होंने कह दो जिस हाल विच है जल्दी आ महाराज ने बुलाया
1: सतगुरु हुक्म मान सो गए धन्ना सिंह संग कह गए
0: दसवें पातशाह का हुक्म मन के वह चोबदार गया जाके उन्हें भाई धन्ना सिंह काही नूं इस तरह कह दिता सुनेहा
1: सुन कै तिन सो बूझन कीना किम सिमरियो मुझको परवीना
0: सुन के उस वक्त उन्हें पुछना कीता हे सियाने किवें बुलाया महाराज सच्चे पातशाह ने मैनू किवें याद कीता है
1: जोबदार तब करे ओ प्रसंग जिन गुण फनियो कवि के संग
0: वो चोबदार कहन लग्या सोहने सतगुरां ने सियाने सतगुरां ने साडिया ने इउं प्रसंग होया भी उत्थे इक चंदन कवि आया होया वो बड़ा हंकारी होया बैठा कहना मेरे छंद का कोई अर्थ नहीं कर सकता कोई गोझ भेद नहीं समझ सकता महाराज ने कहा साढ़े तो घोड़िया के घा ही अर्थ कर देंगे दे वो कहना चंगा बुला के लियाओ ता महाराज जी ने मैनू भेजा तुहाडे पास तुम जल्दी करो महाराज को पहुंचो
1: धन्ना सिंह सुजान सब जाने सफल करी चाहे गुरबाने
0: भाई धन्ना सिंह बड़ा सियाना से समझ गया उस वक्त ने ये गुरां दी जिहड़ी बाणी सी बचन सीगे इन्हां नूं सफला करना चाहिया
1: बहुत मोल के वस्त्र उतारे जीर मोट दे पर तारे
0: जिहड़े कीमती वस्त्र पाए हुए सी उह तां उतार दित्ते उहने जीरण जिहड़े पुराने जे फटे जे कपड़े हुंदे सी घाइयां वाले उस तरह दे वस्त्र फिर पहन ले सी तां घा ही होई क्योंकि इन्हां दा पिंड पैंदा नशहरा पन्नुआ तरन तारन तो अगले पासे भाई धन्ना सिंह ढाही का पिंड है उत्थे गुरद्वारा साहब दे विच इन्हां दे कुछ ग्रंथ भी शायद पए ने एक दसवें पातशाह ने जिहड़ा इन्हां नूं हुक्मनामा दित्ता सी आप दे वल्लों भेजा सी वह भी उत्थे पिया है यह है तो धन्ना सिंह ढाही के नाम नाल ही जाने जांदे ने सो धन्ना सिंह ढाही दी एक चीज होर भी सुनी है कि जदों ये घोड़ियां दी सेवा करदे हुंदे सी तां एक दिन भाई नंद लाल जी उत्थों लंघे धन्ना सिंह काही सोचे कदे असीं भी ये कविता लिखिया करांगे ये भाई ये जिहड़े देखो इन्हां नूं किन्ना माण मिलदा किन्ना असीं घोड़ियां दी लिद हटाउण ही लगे हुए हैं घा पाउंदे हैं तां मन दे विच बड़ा विराग जिहा आया जिवें अखां च अथरू आ गए कि असीं भी कितें पंथ का प्रचार करांगे दसवें पातशाह ने तां भी चौबदार नूं कहा कहिंदे जाओ काही नूं धन्ना सिंह नूं बुला के लिया जद आके मत्था टेकिया कहिंदे धन्ना सिंह उत्थे बैठा तू की सोची जाना भाई तू तो इन्ना प्रचार करेगा सिखी का कोई अंत नहीं रहेगा पर अगले जन्म च करावांगे तेरे को प्रचार। इस प्रकार नाल धन्ना सिंह नूं दसवें पातशाह ने दोबारा भेजा संसार अंदर प्रचार करने वास्ते। सीए महाराज सच्चे पातशाह महापुरश बड़ा पहुंचया होया गुरु का प्यारा सी ये
1: गुरपाले कर जुत जारे इकट्ठी कर सिकंद पर डारे
0: एक सुरपा ले लिया इस प्रकार एक घा बंधन वाली जाली जी ले ली नाल इस तरीके इकट्ठा करके वह घा लिया मोढ़े उते रख लिया।
1: सब काही के बेक बनायो शंक बहीन सभा में आयो
0: काही का पूरा वेश बना के महाराज सच्चे पातशाह को सभा दे विच बिना किसी शंका तो आ गया।
1: गुर पद पदम कीन तब जमो उचित थान बैठे उते समो
0: गुरां दे चरना कमलां ते आ के मत्था टेक के उचित थान सी जिथे बहन योग संगत दे विच उथे बैठ गया सामने।
1: श्री कलगी तर हुक्म उचारा ए कवि है मतवान उदार
0: श्री कलगी तर महाराज सच्चे पातशाह ने इस तरह वचन किया कहंदे भाई धन्ना सिंह आ जिहड़ा कवि है ना चंदन कवि ये बड़ा भाई विद्वान है बड़ा सियाणा है पहला तो सारे नूं ऐ करदे ने महापुरश भी महाराज जी सियाणियां नूं आउंदियां नूं बड़ा चुकणगे वे तां बड़ा सियाणा बड़ा बुद्धि वाला ये बहुत सोहनी कविता लिखदा भाई
1: रज कर आने एक सवैया अर्थ विचार हो दे सुनैया
0: मैंने एक सवैया लिख के लियाया सवैया छंद ये तुसी ना इउं करो ये सवैये दे कहने कोई अर्थ नहीं कर सकता भाई तू इउं कर इनू अर्थ सुना दे नाले सारी संगत नूं सुना दे।
1: सुन धन्ना सिंह अर्थ बखाना तिया खोलस बरखन बैवाना
0: हुण भाई धन्ना सिंह ने अपने मुख विचों ये अर्थ जिहड़े ने कीते ने तो नवजात तीए नवजात ना नवसात तीए नौ ते सत सोलह खोड़स जेड़े ना खोड़स भी सोलह नूं ही कहिंदे ने इस करके उन्हें इस तरह अर्थ किया तीए खोड़स बरखन बैवाना सोलह वर्ष की जेड़ी त्रिया सी इस्त्री से
1: दल खोड़स सिंगार सुहायो
0: जेड़ा लिखिया सी के नवसात किए नवसात कह रहे सोलह कह रहे सोलह वर्ष के इसत्री ने सोलह शिंगार अपने शरीर के उत्ते किते हुए
1: समासन में पिया आयो
0: ओदा जेड़ा सी ना पते कहने वो सोलह साल बाद वापस आया
1: खोड़स घर को चौपड़ रचियो
0: वो अपने नाल सोलह जेड़े हुंदे ने चौपड़ ये लै करके खेड हुंदे जेड़ी चौंपड़ दी ये लै करके आया चौंपड़ दी बाजी जेड़ी है जिन्हां ने खेडी है उन्होंने इहदा ज्ञान है कि इस तरीके नाल सोलिया दाव पाउण वाली हुंदी है।
1: खोड़स दाव लाए सुख मचियो
0: सोलह दाव लाए तो बहुत भारी सुख पाया
1: सोई खोड़स प्यारो ले आयो
0: वो खोड़स जेड़ा सी ना वो प्यारे दे पति ने लियायो तो भाव जित लिया दाओ
1: खोड़स

0: चलन समय संग रहण में दान दीन ओलीन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे,

0: मंत्र जंत्र कलमाए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के विच एक बार जिहड़े मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत

याद रखे करो प्रभु का सिमरन गर्भ ना बस है प्रभु का सिमरन धूप जामा यो कभी घर चो भजा चाहते हो बाबिया को गर्त बीता वाले को कभी कबर से तुरे करता जीव कभी कितने तुरे करता सिर्फ चौदह मेरे घरों कड़े कलेश नट गया महाराज मेरा काम चल पवे तो महाराज पातशाह की कह रहे सिमरो सिमर सिमर सुखावत अगे पड़ोती लिखे बिना इतो भी मिट जू फिर कबर से की लगे जाते झूठे पेंदे हो गुरु तो नाले धागे तवीता वाले को जाके गुरु तो झूठे पेंदे ते गुरु तो झूठे ना पाओ एक बचन कह के समाप्ति करूंगा तन गुरु ग्रंथ साहब की कहते रे एक बार नोट करो रेजी नलज रेजी नलज कहते विशर्मन वेखलो कि डर मिठा बोलता सतगुरु पर आ बचन इतने आके क्या रेजी नलज लाज तो है नाही ये नलज विशर्म जीव ते विशर्म नहीं आती आखिर की गलती होगी ए गुरु का सिख हो गया कबर के मथे टेकन दे हर ताज करत हर ताज ताज मैंने छट के इन छट के पत कानून ते जाए होरना वाल तुरया जाना है ते फिर दृढ़ करवाया कहते नाले तू कहना हमरा ठाकुर सब ते उच्चा कहता नहीं तू कहते सब ते उच्चा तेरा ठाकुरा ते फिर उन्हें कुल की लैन जाना है जे जीवना तेरा ठाकुरा ते मरिया कुल की लैन जाना है सतनाम श्री ये गल ते गुरबाणी का वचन के जीवते को जीवता मिले बोलो जी इतना लिखा कि नहीं जीवते को मुए को मरे को मरिया मिलता है जीवते को जीवदा मिलता है तुरदे को तुरदा मिलता है उड़दे को उड़दा मिलता है ते जेड़े फिर मरिया दी कबरां दे उत्ते चले गए फिर वो जीवदे थोड़े ने मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते रहे वो तेन शर्म आनी चाहिए जीव तू धन गुरु ग्रंथ साहब वर्गा ठाकुर छड़ के इधर उधर धागा पवित्र तरह के चक्कर के ना पे गुरुद्वारे आया कर गुरुद्वार गुरु द्वारे हुए सोची पाई सी बोलो गुरु द्वारे हुए इतने गुरुद्वारे आया कर वेख इतने किसी को कोई धागा नहीं मिलता कोई प्रीत नहीं मिलता इतने इको ही दवाई मिलती है सर्व रोग का बड़ा मिठाई गुरबाणी के विच लिखा है हर बिन कछु न लागे बोलो हर बिन सारे बोलोगे हर बिन भगतन को मीठा भगतन को मीठा कोई गल दुनिया की कोई लक्चर कोई विचार संत जना नु चंगा नहीं लगता एक रब की बंदगी तो बिना हर बिन कछु न लागे भगतन को मीठा अगे लिखिया आन स्वाद सब फिकिया बोलो आन तार कितना पता लगा गुरु अर्जन देव साहब ने कर निर्णय दीठा कर निर्णय करके गुरु ग्रंथ साहब किन्ने ने देखा है कि वाहेगुरु शब्द जिहड़ा कोई शब्द दुनिया ते मिठा नहीं जिन्हां दे अंदर रस वग पिया जिन्हां नूं नाम दा रस आ गया मेरे सतगुरु पातशाह जी किन्ना प्यारा वचन मेरे कान विच इन्ना क्या दो चार मिनट हो ले एक बार आपको सतनाम श्री वाहेगुरु जे तुसी अकागरता बख्शो ते धन गुरु अमरदास महाराज जी आ रचना जिहड़ी पनीर खांदी दुध पींदी जूस पींदी तरह तरह के खाने खांदी आ उहनू रचना नू मुखातब हो के क्या ए रचना पहलो ए कहो हां ए रचना गल करो इहदे नाल ए तुम अनरस राज रही जेड़ा रास्ते नु गुरु ने दसिया आखो सतनाम श्री वाहेगुरु कहते हर रस हर नाम हर रस भोगो हर नाम हर रस ये रसना तू ओ वाहेगुरु की गल छड़ के चुगलियां बड़ियां कर दी क्यों नहीं करते हैं आदो सतनाम श्री बोलो ना संगत साहब विच बैठे हो एक बार सच ता बोलो चुगलियां कर देना अपा कर दे एक गल हुण गुरबाणी का फैसला सुन दे भी चुगल ते निंदक की मौत ते करांदी चुगल ते निंदा करने वाला पहलो जे हुण तुहानू इह गल दस दित्ती जावे ते हो सकदा है तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी बाणी विच लिखिया वचन है कि जिहड़ा चुगली करदा है ते निंदिया करदा ओह रुल के मरदा रुल के ओहदी पछाण नहीं लैंदा कोई पाणी नहीं पिउंदा ओहदी किरिया नहीं कोई सामदा
ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ, ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਰੁੜ ਰੂਏ, ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਥਾਉਂ ਪਾਏ, ਹੱਥ ਹੀ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਾ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੀ ਬੁਝਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ

0: सतगुरु कहते कर हर माला टिंड प्रो ध्यान दो जी जग दिया रूहां एकाग्रता बख्शियो कहते आवास इन्हों बजुर्गां ने वेखे खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरू गलो
1: वाहिगुरू
0: खूहां दे विच एक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर ट एक खूह बना जे श्वास ने तेरे इन्हां नूं माला बना के माल बना के एक एक श्वास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शे इस माल नूं तू आए नूं खिचे कौन कहिंदे इस पीतर मन जोगो सरवण कीता इस पीतर बलदां दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं जोग मन जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दाला टिंडा खिंचन मन बलद बनाओ मन तो साडा सिमरन करद भी दौड़ता रहा है साहब कहते ने तू मन जोड़ के इन्हों टिंडा खिच ते अगे जाके कहने अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलो ना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्होंने पता है एक छोटिया छोटिया मटा पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानू पता पिंडां दे रहण वाले खेती बाड़ी करन वाले पता क्यारे पा दी दे साहब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के श्वासा की टिंडा की माला ए मन जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे तो मैं धन गुरु ग्रंथ साहब पिता जी पूछा महाराज शरीर से कहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री कद के बोलो सतनाम महाराज खेतों में क्यारे होंगे इतने क्यारे कहड़े कहते अखा नाम जपन वाले दमृत ना भर दें अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत बोलने लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी परसन लग पा फिर आखिया महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत भर जी गल कर लगता वा ते कहने फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपन वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपन वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नू जो इस श्वासा की माला बना मगर ए जे बरतना होया जे मन तू ना जोता सिमरन मन ना जोड़िया टिंडा की माला चलनी नहीं थल्यो अमृत आना नहीं ओ इतना गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कुछ नहीं मन नू विच जोना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओ तो गज के बोलो ना तो

बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रबदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरमुखो गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी बख्शिश दा सदका आप जी सरबत माई पाई, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे दर्शन करने लई आपां अपने घरां तों आए हो, वडभागे हो। सतगुरु ने एक था बाणी दे विच ऐसा दर्ज कीता है, बाह पकड़ जिस मार्ग पावो, ओ जीव सतगुरु गरीब नवाज तेरी पावन चरण शरण विच पनाह विच आउंदा है। जिन्हों तो जीवन दे निर्वाह विचों गुजरदिया होया बाहों फड़ के आखे चल गुरुद्वारे चलीए, एवें नहीं। सतगुरु दी पावन गुरबाणी विच ए दर्ज आ कि जेदी बाह फड़ के सतगुरु गुरुद्वारे लियावे ओ गुरुद्वारे आउंदा है। अज दी इस घड़ी दे विच आप जी अपने आप नूं वडभागे जाणो कि तुहाडे पावन शरीर नूं धन गुरु नानक पातशाह दे दीन दुनिया दे मुबारक हाथ लगे, तुहानूं बाह फड़ के सतगुरु ने अपनी शरण विच लियांदा है। इथों हुण जिहड़ियां घड़ियां सतगुरु दी शरण विच आप जी ने गुजारनियां ने, सतगुरु कृपा करे ए 20 मिंट दा समां साडे जीवन दे विच ओ गल समझा जावे जिहड़ी अज दे पावन उपदेश विच गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दीन दुनिया दे मालक इस महीने राही आपां नूं कहणी चाहुंदे ने, उपदेश देना चाहुंदे ने। हे जीव आत्मा, अषाढ़ दे महीने विच तू की कमाई करनी, अषाढ़ दा महीना किन्ना नूं तपश वाला लगदा है, ते किहड़ियां जीव आत्मा नूं अषाढ़ दा महीना सोहणा लगदा है, ए पावन उपदेश सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने अज दे महीने विच बख्शिश कीता है। एक बार सारे मेरे भैण भरा अपने विछड़े होण दे अहसास विच आण के जो मेरे साहब ने मंगला चरण दे विच बेनती कीती है, 12वां माझ महला 5वां विच सतगुरु गरीब नवाज दे ओह पावन बचन तुसी ते मैं सारे एक बार रल के गाईए। बहुता समा अज नहीं आप जी की सेवा कर सकनी, सतगुरु कृपा करे कल तो पूरा समा जिन्ना बख्शिश होगा आप जी दे जोड़े झाड़िया करूंगा। एक बार रंग विच आण

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विचो चा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नू कह रही हां महाराज मेनू विछड़ी नू मेल लो।

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

0: मन मंदा, ये तिले खा के भी काबू ना आया, ये तिले खा के भी काबू ना आया, फिर भी भटकदा रहा। ते फिर करके इस करके बाबा कबीर जी कहते ना बंदिया जंगलों नू जाण दी कोई जरूरत नहीं। बाबा गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह दा वचन कदी पढ़ो, काहे रे बन खोजण जाई। बन किनू कहिंदे ने? कहिंदे किधर तुर पिया जंगल नू, किनू लभण तुर पिया है? आखिर जी रब नू। कहिंदे सजणा ओ ते सर्वनवासी सदा आले पा तो ही संग समाई, ओ ते पोप मद ज्यों बास बसत है मुकर माए जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। वो ते तेरे अंदर रहिंदा है, ओनू जंगलां चो किधर लभण तुर पिया ना जंगल विच गा। बाबा फरीद जी कहिंदे जंगल जंगल क्या भवे, बोलो जंगल जंगल की जंगलां दे विच तुरिया फिरदा कदी ऐ नू कदी ऐ नू। अजे बाबा फरीद जी दीआं बड़ियां कहानियां प्रचलित ने कि बाबा फरीद आप जंगल दे विच गया जी, उन्हे खूह दे विच लमक गया जी, उन्हें संगल पा लिया जी, ओदा मास कां खा गया जी, इस तरह दीआं कहानियां। मगर यह श्लोक खंडन करदा है कि बाबा फरीद किसे जंगल विच नहीं गया। आखो सतनाम श्री। जंगल जंगल क्या भवे, वन कंडा मोड़े, वन विच जंगल विच जाके पैरां विच कंडे मरवाउंदा फिरदा वा, जंगल दे विच ना जा। आखिर फिर कितों मिलूगा जी? हां जी
1: रब
0: है जंगल क्या ढूंढ। साहब जी कहते रब हिरदे च रहा है रब। बाबा बुले शाह एक बड़ा रब दे प्यार विच रती हुई है रूह जेडी कहती बुले नालों चुल्हा चंगा, बुले नालों गज के बोलो बुले नालों जिस ते अन्न पकाई दा, बुले नालों ते चुल्हा चंगा है जेदे विच अग ते बलदी आ मगर ओते को रोटी पका के किसे दा ढिड भरदा है। अपने आप नू इन्नी निम्रता च कहण वाला कहिंदा बुलिया रब ते तेथों वख नहीं। अपना प्यार वाला बचन है बुलिया रब ते तेथों मगर वेखण वाली तेरी अख नहीं। तू वेखदा है शरीर जोत नू तू वेखदा नहीं। कदी भाई नंद लाल साहब नू पुछो कि भाई नंद लाल साहब तुसी गुरु गोबिंद सिंह साहब नू किथे किथे वेख्या है, ते कदी गुरु गोबिंद सिंह बारे भाई नंद लाल साहब कहिंदे रूह हर दर जिसम, रूह हर दर जिसम, जिसम कहिंदे शरीर नू, कहिंदे हर शरीर विच जिहड़ी रूह आ ना, रूह हर दर जिसम गुर गोबिंद सिंह। ओ कहिंदा दुनिया ते जान दी ओ गुरु गोबिंद सिंह आनंदपुर बैठा है, मैनू ते हर शरीर दे विच जिहड़ी रूह आ ना जेड़ा नूर चमकदा है जेड़ी धड़कन आ मेनू पता वा कि हर शरीर विच जेड़ी धड़कन धड़क रही आ वह गुरु गोबिंद सिंह ही आ। रूह हर दर जिसम गुर गोबिंद सिंह, नूर हर दर चश्म गुर गोबिंद सिंह, हर अख दे विच वेखण वाला जेड़ा नूर आ वह गुरु गोबिंद सिंह साहब आ। ते बुल्ला कहिंदा रब ते तेथों वख नहीं मगर वेखण वाली तेरी अख नहीं। आख्या फिर बुलिया पाउण दी जुगती दस। कहिंदा रब दा की पाउणा है, रब दा कितना एवें वड्डी गल आखी, रब मिलदा नहीं रब मिलदा नहीं। गल ते एक विच ही सारी गल मुकदी आ, एक गल विच ही गल मुक जांदी आ। बुलिया रब दा की पाउणा है, इधरों पुटना लाउंदा कोई, इधरों पुटदा कोई, एवें पखंड ना करिए। गल एक विच ही फैसला है कि ए रस छोड़ ओ रस आवा, आ दुनिया दे रस छड़ांगे ते ओ रस आऊगा, ओ रस पिया फिर ए रस नहीं पावा, जिदन ओ पी लिया फिर गलासियां चंगियां नहीं लगनगियां, फिर ए दुनिया दे रस चंगे नहीं लगनगे, उदन ते गुरमुख प्यारे हो फिर ओहो ही रस चंगा लगना है। बाबा जी कहिंदे वसी रब हियालिए वह ते तेरे हिरदे विच वसदा है। बाबा कबीर जी ने एक बचन होर बड़ा सुंदर किया है, प्यार नाल आखो सतनाम श्री। प्रमाण ते बेअंत ने इस शब्द दे उते सारा गुरु ग्रंथ साहब इस गल दे उते प्रमाण मोहरां लाऊगा। मगर बाबा कबीर जी एक बड़ा प्यारा बचन कहिंदे, कहिंदे अल्लाह एक मसीत बसत है, अल्लो एक मुसलमान की कहिंदे ने किथे रहिंदा है, मक्के मदीने मसीत विच रहिंदा है। ते बाबा कबीर कहिंदा कमाल दी गल है।

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगण यारी कंत न पावे बोलो अवगण यारी सारे बोलो जरा अवगण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा ओदे सुभा नू इन्हें जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उन्हां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपा इस करके गुरमुख प्यारो मेरे सतगुरु दे चरणा विच बेनती करनी आ कि आपा नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेडे गुणा दा जेडी रहत जेडे नाम सिमरन बंदगी जेडे जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वो

सारे आखो सारे ही हुण आपां व्यापार करन आया। एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे तो एक एक बचन कीमती, गुरबाणी सारी हीरियां मोतियां जवाहरां नाल मड़ी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा बचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जानिए। बोलो तां व्यापारी। व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसी व्यापार करन ते सारे ही आए हो। हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल देना मेरे मित्रो गुरसिखो भाईओ, ते उन्हूं लोकी कहिंदे नहीं इनू व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चल। तां वा गुरमुख प्यारे हो कि कुछ तां व्यापारी जानिए लाहा लै जाओ। लाहा व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने दसा रुपया की रास पा के दिती सी, इह दसा दे नाल सौ कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है। मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दिता परमेश्वर ने सवास, आखिया एक एक सवास दे नाल परमेश्वर की बंदगी करके लाहा खट के आई। मगर इथों कोई गुरमुख रूहां ते लाहा खट के चले गईयां, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेड़े मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु की गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीओ पौल खंडे धार होए जन्म सोयला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेड़े मन दियां गल्लां सुनदे रहे। मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख।

0: सगल भवन के नायका, सगल भवन के एक शिन दर्श दिखाए जी, एक शिन दर्श दिखाए जी, एक शिन
1: दर्श दिखाए जी, एक शिन दर्श दिखाए जी।
0: हाथ जोड़े तरले पाए, कुटिया विच बैठे कोड़े ने सिख ते प्रशादा सुट के चले गया, मगर एदे तरले ते एदिया बौड़िया ओ जड़ा विण बोलिया सब किछ जानदा है ना। एक भाई गुरदास जी ने बचन पढ़िया, आखो सतनाम श्री, कहिंदे जे रब नूं आवाज मारना हाथी ते कीड़ी, ध्यान दिओ हाथी ते कीड़ी। हुण हाथी बड़ा उच्ची कड़ाउंदा है ते कीड़ी बेचारी दी आवाज किन्नी है, ते भाई साहब नूं पुछिया जे हाथी आवाज मारे कीड़ी आवाज मारे ते रब दे घर किहदी पहलों पहुंचदी, ध्यान दिओ किहदी पहलों पहुंचदी। ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने कीड़ी दी पहुंचदी, क्योंकि नमाणी होके आवाज मारदी, क्योंकि ओ नमाणी होके नताणी होके आवाज मार दी है। इन्हे भी नमाणे नताणे होके बेनती की, हे साहबा सारे पिंड वालिया कोल चरण हैगे, हाथ हैगे, अखां हैगियां, मैं ते गरीब एक आदमी ते मेरे मन विच भी हुण चाह पैदा हो गया है, दर्श तेरे की

वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा ऐनी प्यास लागी हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी हो दे तो बिना उदास हो गई है, शेर देर नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे तेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी।

0: करो कृपा। विण सिर सेव करी जय, विण सिर सेव करी जय, विण सिर
1: सेव करी।
0: ये पक्के गुरु दिया प्रेमणा ने, जिन्हां नूं पूरे गुरु की चेता लगी आ, जिन्हां नूं पूरा गुरु मिलन दा चा मन विच पैदा होया, वह सौदा कर दिया ने, कहिंदियां सिर दवांगियां, सिर सिर दा मूड़ा बना के तेनू उत्ते पावांगियां, एक बार मैनू प्यारे दा राह दस। अज कच्चे गुरु कच्चे कहण वाले, मैं अजूटा सैटी जिथे गया सां, गुरमुख प्यारे भी गए सी, भाई तारा सिंह हुणी उथे प्यारे, एक सज्जन मिलिया मैनू, एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। प्यास की गल आ के प्यास भी लगे ते पूरे गुरु दे दर्शना दी लगे, पूरे गुरु दे दी किना दी, हां फिर एक बार आखो का दी जी, अधूरे बड़े ने 99, अज अधूरे ने इस दुनिया ते, इस वेले 99 गुरु अधूरे ने, 99 एको ही पूरा है, बाणी गुरु, एदे तो बिना कोई धरती ते गुरु नहीं। उथे कमाल दी गल सुनाई, सह ते मोना सी, ओ कहिंदा जी कथा सुनदा वा, आनंद आया जीवन विच, मैं तुहानू घुमण खाणना किसे दिन, यूटा साल्ट लेक दे लागे लागे बड़े सुंदर पहाड़ ने, बर्फ पैंदी, मैनू कहिंदा मैं तुहानू घुमा के लिआऊं, घुमाण लै गया, ध्यान दिओ एकाग्रता बख्शो, मैं कोई रोचक गल बना के आप जी का ध्यान नहीं उहदे विचों कुछ लैणा चाहुंना। पहाड़ी दे उत्ते लै गया, जाके कहण लगा कि कुछ दिनां तों जदों दा कथा सुन लिया, मेरा मन करदा है कि मैं अमृत छक लां। आप जी नूं खुशी दी गल दसां, 27 तरीक नूं उथे अमृत दा बाटा तैयार करना है, सारा शहर ही अमृत छकण लई तैयार हो गया, जिन्नियां 60 फैमलियां रहिंदियां ने जूटा सिटी दे विच, 60 दियां 60 फैमलियां ही अमृत छकण लई तैयार, सारियां ने नाल खाता, ऐसी गुरु की कृपा हुई। इनू जदों दास ने बेनती की कि जसरना जे तेन गुरु के बचन प्यारे लगे ने ते फिर तू अमृत छकण लई तैयार हो जा, कहिंदा मैं नाम लिया है, ध्यान दियो मैं नाम लिया है, मैं नाम कितों लै लिया, पंजा तो बिना ते नाम कोई दे नहीं सकता, बोलो आखो सतनाम श्री, क्योंकि एक बाणी दे विच बचन लिखा सतगुर दाता हर नाम का, सतगुर दाता, फिर बोलो सतगुर दाता, गज के एक बार आखो नाम कौन दे सकदा, सतगुर दाता अमृत दा बाटा भी जे कोई कला बंदा बना के दे दे ते लै लोगे, पांच सिंह अमृत जो देवे ताको सिर धर शक पुन लेवे, कला बंदा ते रहत भी दृढ़ करावे ते नहीं लैनी, पुन मिल पंचों रहत जो भाखे ताको दृढ़ कर मन में रखे, जेड़े पंजां दा फैसला है। ते कहन लगा जी मैं नाम लिया है, मैं कित्थों लै लिया नाम, राधा स्वामियां तो, कहिंदा नहीं, मैं निरंकारियां कोलों, कहिंदा नहीं साडे दुश्मन थोड़े नहीं होण, आप जी नूं तां बेनतियां करदा सचेत होण दी जरूरत, दुश्मन थोड़े नहीं, आख्या फिर कित्थों लिया, सच्चे सौदे वालियां दा लै लिया, नूर महल वालियां दा कोई शब्द शूद चानना वेख लिया, कहिंदा ना इन्हां दा नहीं लिया, मैं क्या फिर तू कित्थों लै लिया, एक बड़ी सत्कारयोग संस्था दा नां लैके कहिंदा जी पुच्चो दी मंडी वालियां कोलों नाम लिया, पुच्चो मंडी, बाबा हरनाम सिंह साहब बड़े जीवन वाले हुए ने, बड़ी करनी वाले, बड़ा सिमरन व्यासी रूह हुई, रब दे चरणा नाल लपटी हुई रूह रही, मैं कहा पुछो मंडी वाले दा नाम ते मैं सत्कार नाल सुनिया, देखिया तो नहीं कदी, वो नाम देंदे ने, कहिंदे जी उन्हां दी एक शाखा है मलूका पिंड बठिंडे जिले च, मैं कहा जी उत्थे की है, कहिंदा आओ मैं तुहानूं घर जाके विखाउणा, ध्यान देना आखो सतनाम श्री, जितना दा भाई जरनैल सिंह साहब दा शरीर है ना, इतना दी पग, इतना दा कमीज पजामा, करण वरड़ी दाढ़ी, उस बाबे दी नाम उहदा बलविंदर सिंह, कहिंदा मैनू उहने नाम दिता है, मैं कहा की नाम दिता है दस देंगा, कहिंदा दसदा तां नहीं, उह कहिंदे ने दसना नहीं नाम किसे नूं, मगर तुहाडे नाल वी प्रेम पै गया, मैं दस दूं उहने नाम की दिता, ध्यान दिओ, मैं कहा की नाम दिता है, तुसीं हैरान हो जाओगे, इन्हां कालियां भेडां नूं कित्थों फड़ोगे हुण, इन्हां नूं कित्थों फड़ोगे, राधा स्वामी का पता लग गया कि साडे दुश्मन ने सानू तोड़ दे, निरंकारियां का तो पता लग गया, आ जिहड़ियां सिक्खी भेस विच कालियां भेडा इन्हां नूं की करोगे, आखण लगे जी उहने नाम दिता, मैं की नाम दिता है, कहिंदा एक ओंकार सुनियो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद ओम, इन्हां लिख के ना एक ओंकार सतनाम ते नाल जोड़ता ओम, फिर अगे सुनो, बह जा पुत बह जा, इना दे के ਨਾਲ ਓਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀਸਾ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਓਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਅੰ ਕਰਿਅੰ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਵਾਰਤੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਹੈ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਹੀ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾ ਚਲ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਓਮ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਹ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਓ ਪੋਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪਿਓ ਪੋ

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने वो दी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी वो दी सामने वो दी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चोर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चोर हो सकता है होर किसे चोर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चोर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चोर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे हो इहदी फोटो दे उत्ते उहने चोर रखे ते चोर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदिआं दास ने पहलों मारी फोटो भुआ के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे हो बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

0: मेरे साहब वाजा मारदे ने, मेरे मालक कहंदे ने मेरे भराओ जे को खेती बीजनी अब कलू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो कलयुग दे विच होर कोई खेती नहीं जे उगदी, इको ही खेती उगदी जे सतनाम श्री वाहिगुरु नाम जपो। हां जी
1: पलीता चार गवाया हंड के, चार गवाया सम,
0: नींद बड़ी आउंदी, काम करन नूं बड़ा दिल करदा है भाई जी, कितने किसी नूं कह के वेख लो अमृत वेले आवी जरा नेत्रेम कर लिए कट्ठे बह के, कई बार किसी नूं कह के वेख्या, किसी नूं कह के वेख लियो, ओ काम ते भी जाना सवेरे, ए काम नहीं तू एक बार आखो प्राणी तू आयो केड़े केड़े काम आया तू, असली की काम है साडा, क्यों जी रब नूं पाउणा ही काम है, भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोविंद मिलण की, मगर किस तरह का बेहोश हो गया इंसान जदों कहिंदा है वो भाई जी फिर सवेरे काम ते जाना हुंदा, ए की आ जिहड़ा नेत्रेम करना अमृत वेले उठ के, ए की आ, ए कोई काम नहीं, होर कार विकार है, बोलो होर कार, फिर बोलो होर कार, जेडे होर कारम ने कम मालक कहते होर कार विकार है, एक सच्ची कारे लाया, एक होर सारी दुनिया विकार दे काम कर रही, एक ओ ही सच्ची कार आ जेड़ा कोई अमृत वेले उठता इशनान करता ते जपदा सतनाम श्री, होर ते सारा कार विकार ही। ते मेरे साहब जी कहते ने चार गवाया हंड के, चार पैर ते काम कीता फिर फुर के इधर चले गया उधर चले गया, गड्डी दे विच बह गया, कदी ऐ नू चले गया कदी ऐ नू चले गया कदी ऐ नू चले गया, ते पुछया कित्थों आया, कहिंदा काम लभदा आया, ते जिहड़ा काम लभ के रब ने दिता उह करदा नहीं, आखो सतनाम श्री, तो काम करिया कर परमेश्वर दे नाम दा, फिर पढ़िया कर काहे रेमा चितवे उद्दम जां आहार हर जीव भरिया, ओ बंदिया एवें ना घबराया कर, सैल पत्थर मैं जंतो पाए तां का रिजक अगे कर तरिया, कि ओदे कहने दे तां मन ओदा बचन ते मन के वेख। मेरे साहब कहिंदे चार गवाया हंड के, चार पैर ते तू सारा दिन काम करके फिर तुर के गवा लिया, ते रात नूं जदों सौ गयो हंड के, चार गवाया सम, सम मैंने सौ के गवा लिया, एक थां ते होर मेरे साहब जी बचन करदे ने, एक वार आखो सतनाम श्री, कहिंदे सारो दिन स मजूरी करे, इतना लिखिया जे सारो दिन स की करदे हो स्टोरां ते सारा दिन, बोल दे एक बार की कर दे हो, मजूरी कर दे हो, सारो दिन से मजूरी करे, सारा दिन स्टोर ते मजूरी करदा है, मगर हर सिमरन की वेला जदों सिमरन दा वेला आया फिर बजर सिर परे, कहिंदा सिर भारा हो गया सौना है, फिर बुरे काम को उठ खलोया घर आया थकिया टुटिया, उस वेले इशनान कीता है घरदिया ने दसिया फलाने थां ते पार्टी अज लैके गड्डी दौड़ गया, बुरे काम को उठ खलोया, ते जे किते कहिंदा कि सजना हुण तू थका बड़ा आया वा इशनान कर ला लै रास दा पाठ कर लिए, कहिंदा थके बने हैं नाम की वेला, अवसर अपना बुझे ना बेगाना, अवसर अपना ए अपने समय नूं पछाणदा ही नहीं। इथे भी बाबा फरीद जी इस तरह के कहिंदे रहण गवाई सोए के, बाबा नानक जी कहिंदे रहण गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है, फिर आ जिहड़े स्टोरां तो कट्ठे करके लियांदे की ने, बोल दियो कौडियां कौडियां, हीरे वर्गा जन्म परमेश्वर ने दिता, कौडियां दे भार रोज वेची जांदा है, रात वेचती दिन वेचता कादे च $100 च। एक महापुरुष गुरमुख प्यारे थाईलैंड कथा करन गए, आखो सतनाम श्री, फिर एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, ते ओ कहिंदे मैनू उत्थे कहिंदे जी पाठ दी ड्यूटी ला ला, सहज पाठ कर दे, कहिंदे मैं पाठ करन लग पिया, जदों मैं एक एक पन्ना पढ़ा ते मैनू अंदरों गुरु साहब आवाजां देण, वेचता ही एक अंग, वेचता ही एक अंग, एक रुपये च दो रुपये च वेचता ही, सौ रुपये च सहज पाठ करेगा, सौ रुपये च गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सहज पाठ किया वेचता ही, जिन्हां नूं जाग आ गई जिन्हां नूं पता लग गया कि ए जीवन मैं वेच रहा वा, रहण गवाए चार गवाया हंड के, ते चार गवाया चार पैर दिन काम करके गवाता, चार पैर रात सौं के।

हे साहब जी ए जड़ी रोज अरदास हुंदी आखो सतनाम श्री हे साहब जड़ी रोज अरदास हुंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रशिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चिया वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करौनी पवे रोज सुते सिद्ध पटीशन हो जाए रोज सुते सिद्ध अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागां वाला दिन आउणा है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड्ड दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे साह आवे कहिंदा आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी कि मेरे गुरु दा उपदेश होगा पियो पौ लखंडे तार पियो पौ

0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु
1: नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक
0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
0: सिद्ध कहिंदे ने असी सारी मंडली ने तुहानू धन कहा, हरिद्वार दे पांड्या ने तुहानू धन कहा, जगन्नाथपुरी आलियां तुहानू धन कहा, मुल्तान दे पीर तेरे चरणा ते डिग पए, मक्के मदीने वाले गढ़ बगदाद वाले तेरे चरणा ते डिग पए, आखिर राज की ध्यान दियो जरा, आखिर राज की शक्ति की। ते धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने सिद्धू खोजत खोजत अमृत पिया, बोलो खोजत खोजत लभदिया लभदिया वह चीज लभ गई जिदे नाल फिर सारे मसले हल हो जांदे ने। खोजत खोजत अमृत पिया, अमृत पीता मैं जिदे करके जय जयकारा हो गई, जिदे करके जय जयकार हो गई, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, मन तन विच परमेश्वर वस गया। तो फिर सिद्धा ने अगला सवाल किया, ये जिहड़ा अमृत आ बड़ा कीमती है? साहब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां बहुत कीमती है। आखिया फिर दिता की कीमत की दिती जे? ते बड़े प्यारे बचन गुरु नानक साहब ने जो उथे बोले, बड़े प्यार दे बचन ने, कहिंदे खिमा गई मन सतगुर दिया। अमृत नहीं उतरा मिलदा जिन्ना चिर मन नहीं अपने गुरु दे अगे अर्पण करना पैंदा, जिन्ना चिर मन नहीं जीव आत्मा वेच देंदा। आ लोकी बहुते कहिंदे मेरा मन नहीं करदा, मेरा मन नहीं मन्या, मेरे मन दी अजे परिपक्वता नहीं होई। गुरमुख प्यारे हो, ये ते रोगी होए नू, इनू कोड़े होए नू, इनू विगड़े होए नू, मन बेचे

जुड़ के जुड़ के साहब गुरु नानक पातशाह कहणगे सौदा कर लिया परमेश्वर दे नाल, उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं अपना मन वेच दिता है ते आख्या जी दिता है ते कुछ लईदा भी आ, कोई चीज दईए ते उहदे बराबर लईदी। मेरे साहब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां सिद्धो मैं लिया है। कहिंदे की लिया है? कहिंदे मन दिता वा ते खिमा लै ली, खिमा निम्रता लै ली उहदे कोलों, नीवा पन लै लिया उहदे कोलों, निम्रता लै ली, झोलियां भर लिया मन दे के। अज जदों मैं कई बार पढ़दे आ ना, तुसीं भी पढ़दे ते मैं भी पढ़दा सिखां दा रोज पढ़दे हो, मन नीवा ते मत उची। इतना हो गया जी, उल्टी गल चल गई, हुण मन हुण उच्चा हो गया ते मत इतना नहीं लगता। ध्यान दियो अपने अंदर झाती मार के वेखो, मन करके ते असीं कोठे ते चढ़े आ, मन करके ते साडे वर्गा है ही कोई नहीं। मन दे विच ते जिन्हों भी वेखदे हो कहिंदे छड्ड इहदे वर्गा, मैं इहदे नालों चंगा। मन दे विच मन करके आपां रोज कहिंदे अरदास विच कि हे सतगुरु सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची होवे। मगर कितना दी ए गल होगी साडे नाल वापर गई, असी मन करके हंकारी बन गए, मत करके नीवे हो गए, मत इन्नी नीवी हो गई आ भरा नूं भरा वेख के राजी नहीं। सिख सिख दा की आ, बोलो जी की आ? जे गुरु गोबिंद सिंह साडा प्यो आ ते सिख दा सिख की लगदा है? इहदे नालों दूसरे भरा ते कदी धोखा दे देणगे? दूसरे भरा नूं ते असीं मन्निया है ना कि ए मेरा भरा है, मन करके मन्निया ना। ए ते गुरु ने मोहर कला के दिता कि एक पिता ते तू मेरा गुर हाई, एक प्यो दी औलाद आ, जिन्ने जिन्ने वाटे चो अमृत पीता वा। कमाल दी गल आ, उहदे प्यो दा नाम गुरु गोबिंद सिंह आ, माता साहिब कौर आ, उसे प्यो दा पुत, उसे मां दा पुत, एक दूसरे दा वैरी बनिया। कदी रहत मर्यादा पढ़ के वेखो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं बाहर ना चले जावा, सारे मात्र आप जी नूं कहूंगा जो सिख सिख दी चुगली करे, बोलो जो सिख सिख दी सो तनखाइया, सो तनखाइये दा मतलब हुंदा है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च जिस तरह गुरमुख प्यारे चौर कर रहे ने, तनखाइये नूं कोई हक नहीं गुरु दी हजूरी च चौर करे। ध्यान दियो, जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करे, जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करके काज विगाड़े, ओह कड़ा प्रसाद नहीं विगा सकदा, प्रचार सकदा, ओह तनखाई है। जिहड़ा सिख सिख दे दाड़े विच हथ पावे सो तनखाई है, जिहड़ा सिख सिख दा मुंह खड़ावे सो तनखाई है। मगर आपां अपने शीशे विच किते झात के वेखीए फिर असी सारे ही तनखाई है। इतना लगदा वा हे मेरे सतगुरु, कदी कहना पऊगा हथ जुड़ के हम बारक मुगद आण, हम बारक